0: नमस्कार हो नमस्कार नाई, ये बुढ़ौती में बूढ़ा बूढ़ी का बात कही जाता। अका होई डॉक्टर नी बहनी, बड़की पतोहिया दुई जीव के भइल बाई, ओकरे देख रेख के जोगाड़ खोजल जात बा। आहा, ई होखे न तरीका सास ससुर के। हाँ तब का, पेट में बच्चा रहले के बाद दुई वर्ष के जब तक नाई हो जाले, ई हजार दिन में अम्मा और बच्चा के पोषण युक्त खाना खियाए के चाही और सर सफाई के बारे में ख्याल कइल जाला, तब बच्चा और अम्मा के दोनों जनी के स्वास्थ्य ठीक रही।
1: देखा, पाथर खोजत के भगवाने मिले जैसन हो गई। और का करे पड़ाला डॉक्टराइन बहनी तनी बता देता।
0: ठीक बा, सुनल जाए, रेडियो में लगातार बाजत बा।
2: गोस मछली अंडा सबसे बढ़िया बा, गोस मछली अंडा सबसे बढ़िया बा,
0: फल फूल और साग पात बच्चा के खाना साथ साथ
1: सब मिल के खियावल जाए,
0: कमती में दुई साल तक महतारी के दूध न छोड़ावल जाए, बच्चा चालाक और निरोगी बनावल जाए। हाँ, हम ते बच्चा के स्वास्थ्य बनावे के संति 6 महीना पूरा भइले के बाद अम्मा के दूध के साथ सक भर ते घर के ताजा और तरकारी अंडा मछरी गोश हरियर साग पात और पियर जात के फल फूल खियावेली।
1: ओकरे साथ साथ गर्भवती मेहरारू के रोज रोज जितना खियावल जात रहल गे, उसे एक जवा बेसी दिहल जाए और बच्चा के महतारी के जितना देत रहल गे रोज, उसे दुई जवा बेसी देवल जाए।
0: लेकिन ये सब खियाए वाला चीज और तैयार करे के खियावे के समय में सर सफाई में ठीक से ध्यान दीहे के चाही, खास करके हाथ सफा रख, खाए वाला सामान ठीक से धो के और पानी भी सक भर धिका के पिए के चाही, बुझलू ने।
1: आईडी नेपाल के आर्थिक सहयोग और सेतो गुरास बाल विकास सेवा रूपंदेही के व्यवस्थापन में संचालित पोषण मार्फत जीवन रूपांतरण परियोजना और रूपंदेही FM द्वारा सचेतना में जारी संदेश।
3: नमस्ते आई नमस्ते।

0: तिनोरा स्वप्न देखि
1: ए तीन माने खाएर सुतेर के के के गीत चाहिँ दिउँसै जे यो सपना लाउन
2: नाच्ने जम सधैँ आश गर्छ

0: 99.4 रेडियो था संचार स्टूडियो टाइम
1: इट्स 9 एएम हिजो जस्तो आज छैन आज जस्तो भोलि रहने छैन समय गतिशील छ जब समय बोल्न थाल्छ संसार सुन्न थाल्छ यो हो था संचार नेटवर्क समयको आवाज

0: किना जनित दांत जांच स्केलिंग तथा पॉलिशिंग फिलिंग रूट कैनल दांत निकालने डेंटल इम्प्लांट देखि आकर्षक मुस्कान का लागि आवश्यक सम्पूर्ण उपचार अनुभवी दन्त चिकित्सक बाट
1: दांत सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी का लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोस्
0: डर्माडेन्ट नेपाल हेयर ट्रान्सप्लान्ट स्किन एन्ड एस्थेटिक डेन्टल क्लिनिक एन्ड इम्प्लान्ट सेन्टर पाटन हस्पिटल रोड लगनखेल सम्पर्क 01 54 54 66 वाट्सएप 98 65 44 24 96

नमस्कार। रेडियो लुम्बिनी अपराह्न 5 बजे हाल खबर में दिवाकर पन्थी को स्वागत छ। यो हाल खबर एफएम 96.8 मेगाहर्ज अनलाइन www.radiolumbini.org विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन र रेडियो लुम्बिनी को फेसबुक पेज बाट प्रत्यक्ष सुन्न सकिन्छ। हाल खबर को शुरू में मुख्य खबर शीर्षक। आज हरितालिका तीज पर्व मनाइदै देशभर शिव मंदिर में भक्तजन को विशेष चहल पहल। भोटेकोशी बाढ़ी का कारण तीज को रौनक में कमी। भोटेकोशी बाढ़ी प्रभावित को पुनर्स्थापना में स्रोत को कमी होना नदीने प्रधानमंत्री को प्रतिबद्धता। सुरक्षित स्थान में नया बस्ती बसाने तैयारी। कांग्रेस संस्थापन निर्णय नमाने इतर पक्ष को निर्णय। 15 महाधिवेशन प्रक्रिया अपने ढंग ने अगि बढ़ाने। एमाले पुनर्गठन कार्यदल को बैठक असोज 1 गते सम्म का लागि स्थगित। 3 सदस्यीय अंतिम मस्यौदा संपादन समिति गठन। भोटेकोशी बाढ़ीबाट कृषि क्षेत्र में ठूल क्षति। 1 अरब रूपया भन्दा धेरैको पशुधन गुम्यो। बाढ़ी प्रभावित जल विद्युत का सुरूंग तथा भग्नावशेष में खोजी कार्य जारी। तिरोत्तमा को नया मिल का जीतबहादुर सोमई ड्रैगन खेती में रमाउँदै धान छोड़कर ड्रैगन फ्रूट वार्षिक 5 लाख आमदानी। मुक्तान को जोमसोम में भोलिदेखि जलवायु सम्मेलन। 420 स्थानीय तहहरू सहभागी हुने। आशावादी भन्दै लगानीकर्ता। तीज को दिन शेयर बजार दोहोरो अंकले बढ़्यो। चाड़ पर्व लक्षित लागू औषध सेवन चेक जांच में कपिल वस्तु में एक दिन 4 चालक पकड़ाऊ। केराले मूल्य पाउँदा दांग का केरा उत्पादक किसान उत्साहित। र एसियाली खेलकूद का लागि नेपाली क्रिकेट टोली को घोषणा।

तीन महीना तीर्नु होस्, सात महीना चलाउनु होस्। क्लासिक टेक को 200 Mbps इंटरनेट सात महीना को लागि मात्र रु 5,700 मा, साथै